0: 이스파도 시그든 글고도 인도 모르자르자 조가서 남바야라 가서데 테르기 연세주 나 테르는 일 곱신 시그자 시그르구지지 이거친 거서 아르제그구지지 달리 테르코니 아르점 선탐 마르 너나핑고 나샤오나스그리 인도 샤크이스카나 함요나스그리 가서 가서지 세제즈라 직급 장르도 세제즈 조피야라 테르제즈기 인도 가서 이코니 렌제즈기 인도 디스타뻬인지나 오양이 하고 이하오랄 미치테니 마크이게몬 첼미냐그니 세조르점 선다리 인도 ओयन जंबा लरगा यखतास बियन फ्टेन नरगा विखान तोयन अर्चो नरगा विन करकायन से जोजम सिंतरे या ताता इन नतासम ताचो गजवा गंदनी जिना ओया तकरर किल सेन बकदा नाव जगा समचाम गोरकन होला ओ चंगो जरगन अगन्या यखजखे ताकन कर सेम गखशा यखजखिरा ओया तले कन चंबुर गरी संग तनासम ने कथासु तन दिखल तो गर्जसु हुये चलपाद फशाली तंगोसु माई चलपाद निनी तंगोसु ओ या तांदी नितलंदनी जिना गोरजासन को निफशारा तगा जिक जम तंगम तला तगा ससावा चांज तुखतगाने खरपा चांज खरजगानगाने अरगो अन कारम तोसु खिचिल दपचा नाख पटे तसु खिचिल सतुक मी खारजम छेसु खिचिल दचा नालातर मंगसु खिचिल कोगा ततंग मतंग गुमा तकना कफिंग गथमादे Тархсыр макалын санаасыз биока, рыгзыр габды часа наптыгыз биока. Тин мамузык ипчаңдынз, уптагмырсыни чадынз. Да чаз грэтэ диуна. О яңа начыга йылын кумманы ипчаңка мазазын жоқлонунды. Параңга ныкындан бири таңдыри. Тагыт буна алу варманы, шафшыгна ма таркону. Да чара окилан бари бога. О янды ивдали тайжина. О янды вангол гужасасын сэжүндэ асынгы. Мисымган банчи гылгый дисин буни гасма юла мисым чок арду гылгый арду кор муктанга тулма юла тангар гул кшарги сандыстова ми бари ташун не кержерги конкерсе макадын шигда тангта не кан чамбур гарис цанг о я тачо сырмо нак чарду даду зарыгин нафшазын ну чарыгин наньязын ну о я таргу сыр учак гахтулма мону шафити мартук хума мону арджив сыра яган умдрен корни арджи комлык ден уфшагын корны о янта мугыги нафтар гул шар гул дан разы юну та о я чак сева о я гани га гумунда до гунде сам би хасы ги дали ком би чак ги дали я та хаса гын цен цен дали чак мару ток хат тари дали о я шем пон чак га шом шом ги дали мет цай ку чом чом ги дали мар ми калун га казам ми хтар ни ни сар ча болун га кар кта мар ни ни лаг алак кар кри да танг та танде ви чер сон ни чем сон ла ке та мурди Ya ta chesun suran gantasing da ning iterum samlu matang kasyap sali kama kama tung patrap jayi samarikung asali dimarikung apaljok ne jam tamu mingo nanza nalung asgiyo nari nga ta nafshabraz giyo nari oya nyekya gani kargin da sgum chaki lok yozong na sgum tang na ingina ngardin keri chegum nyayo ya gadong sazar tap kum beni u benar gu wicho gan zayu goga oya chun chamba chama sung su cham targu ni tak su ning iterin da na ingina terang chuzung ita na lok cho chil lok ita na shacho chil kertang na ओ यंगर जिक तोगन गुमन दयो या नान जिक का म छन दयो मर जान खतम गो हुना छक सास गयो छम छम गो सोनार गे सास गयो निंग इतन दनी ता ता सम चुंग गोल गुजाला तेरा फिर दि दफ छक छक न कसनी दो जु दि नफ छक हम गो चली जगो कांते समय क छक अख्त गी जगो लगले समय क तंग अख्त गी जगो गा ओ या छक गी चुन नी दवा दोला अक्षे तबरा तंग इन जना तंग लियला छतन को बा यंग तक यला जनु तंग इन जना गसा वना बा नित क्या छल जो हुनिया नख छिन यन तयां पर तक मर थेमा यंग ने या ताकवी तंग फटिंग ला कन जन नी यख छक ला कम खिकम चीना तंग का नि गवदख समने क छक छक जक पान कर गो नि छक छक या नित ने मा तंग जना तंग ला तंग गर जक दिग याला ओ यन दे इन द गाने ओ या तंग का नि गी वंडा डा अर अंडो खक छक ताया तब संग मा अर जक खक छक ताया अर जक था मा ला कर या शर कर अर दोर जक या ᱛᱚᱠᱷᱟᱭ ᱛᱟᱨᱫᱞ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱚᱥᱚᱫᱜᱟᱞ ᱠᱥᱮᱨᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱯᱥᱟᱢᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤᱜ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱨᱚᱝᱜᱚᱣᱟ ᱠᱥᱮᱨᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨ ᱠᱚᱜᱟ ᱟᱨᱫᱟᱱ ᱨᱟᱠᱥᱟᱢ ᱜᱟᱱᱫᱤᱢ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱟᱠᱟᱭᱟᱜ ᱱᱮ ᱜᱞᱟᱥ ᱠᱛᱤᱭᱟ ᱪᱟᱨᱢᱟᱪᱤᱯ ᱪᱟᱥᱤ ᱛᱷᱟᱝᱞᱢᱱᱤ ᱧᱟᱨᱢ ᱱᱮ ᱜᱪᱟᱨ ᱛᱤᱛᱤᱢ ᱚᱢᱤᱭᱟ ᱭᱟᱝᱢᱟᱱᱟᱨ ᱱᱟᱨᱫᱟᱝ ᱡᱟᱥᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱜᱮᱞᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱥᱚᱝᱟᱠ ᱪᱟᱥᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱜᱮᱞᱚ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚ ᱱᱟᱠᱨ ᱜᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱᱪᱚᱱ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱠᱷᱮᱨᱪᱤᱛᱚᱢ ᱯᱷᱛᱞᱦᱤ ᱱᱟᱯᱛᱮᱱ ᱥᱚᱠᱚ ᱭᱚ ᱠᱟᱥ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱯᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱛᱨ ᱠᱟᱨ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱵᱡᱟᱝ ᱱᱤᱠᱛᱤᱨᱟ ᱭᱟᱜᱱᱟᱥ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱤᱜᱨᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟᱥ ᱜᱨᱤ ᱚ ᱭᱟᱯᱛᱤᱱ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱠ ᱥᱚᱠ ᱠᱟᱥ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱜᱱᱟᱥ ᱛᱩᱱᱜᱟᱨ ᱢᱤᱥ ᱠᱷᱟᱫᱨ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱪᱷᱟᱫ ᱜᱨᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱱᱟᱥ ᱜᱨᱤ ᱠᱚᱜᱟ ᱚ ᱭᱟᱛᱟᱭᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱮᱜᱨ ᱪᱮᱨᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱣᱟᱨᱫᱮᱢ ᱛᱤᱱ ᱤᱱᱥᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚᱢᱛᱤᱱ ᱤᱱᱥᱩ ᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱭ ᱱᱤᱢᱫᱟ ᱢᱟᱦᱩ ᱛᱮᱦᱩ ᱛᱟᱠ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱡᱢᱟ ᱠᱩ ᱠᱩᱱ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱫᱩᱝᱤ ᱛᱟᱠ ᱟᱞᱞᱟᱦ ᱠᱚᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱠᱟᱥᱩ ᱫᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱱᱫᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱱᱤ ᱠᱚᱜᱟ ᱚ ᱭᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱝ ᱴᱚᱱᱨᱥᱟ ᱱᱟᱥᱞ ᱢᱮᱱᱤ ᱜᱤᱵᱫᱟᱱ ᱛᱩᱨᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱟᱢᱱᱟᱨ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱚᱵᱫᱮᱱ ᱛᱩ ᱱᱟᱨᱫᱩ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱱᱟ ᱤᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱞᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱚᱨ ᱡᱮᱨᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱞᱩᱝ ᱭᱚᱛ ᱟᱨᱢ ᱢᱟᱨᱢ ᱫᱟᱠ ᱥᱟᱨ ᱡᱮᱞ ᱦᱚᱢᱤ ᱤᱱᱴᱟ ᱢᱟᱥᱛᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱟᱨᱤ ᱨᱡᱟᱠᱤ ᱠᱟᱣ ᱟᱱᱛᱤ ᱢᱟᱱᱛᱤ ᱫᱟᱨᱡᱟᱠ ᱠᱚ ᱢᱤᱥ ᱠᱟᱞᱟᱱᱭᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱫᱮᱱ ᱵᱟᱥᱭᱟ ᱱᱟᱢᱫᱤᱱ ᱵᱟᱢ ᱨᱚᱱᱟᱨᱤ ᱨᱜᱩᱱᱭᱟ ᱢᱟᱠᱷᱟᱨᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱛᱜᱱᱟᱨᱤ ᱡᱟᱞᱚᱱ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱵᱫᱮᱱ ᱵᱤᱥ ᱛᱤᱜᱱᱟᱨᱤ ᱚᱭᱟ ᱱᱟᱯᱠᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱢᱤᱭᱚ ᱞᱮᱱᱟᱨᱤ ᱚᱜᱟ ᱱᱚᱪᱟᱱ ᱪᱩᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟ ᱠᱷᱮᱨᱪᱤ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱟᱨᱱᱟᱨᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱨᱡᱚᱢᱟᱨᱤ ᱱᱮᱨᱢᱟᱯᱛᱩᱱᱤ ᱱᱚᱢᱩᱫ ᱢᱟᱨᱠᱚᱜᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱭᱱᱫᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟᱱᱟ ᱢᱟᱥᱢ ᱠᱟᱨᱩᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱠᱟᱨᱩᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱩᱱᱟᱱᱫᱟ ᱤᱥᱢ ᱛᱟᱢᱩᱢ ᱫᱟᱱᱟᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱩᱪᱩᱱ ᱦᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱱᱟᱱᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱠᱤᱱᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱢᱩᱫ ᱜᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱚᱭᱟᱝ ᱜᱚᱞ ᱠᱚᱡᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱟᱜᱟᱛᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱮᱜᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱢᱟᱱ ᱱᱟᱠ ᱪᱷᱟᱠ ᱪᱷᱟᱵᱩ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱞᱟᱨᱟᱜ ᱞᱟᱢᱚ ᱱᱩᱠᱛᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱟᱨᱠᱥᱢ ᱛᱟᱯᱠᱤ ᱛᱟᱫᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱨᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟᱝᱜᱤ ᱫᱮᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱥᱤᱠᱥᱤ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱥᱤ ᱪᱟᱢ ᱵᱟᱨᱫᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱦᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱚᱭᱟ ᱪᱩᱞ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱫᱮᱭᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱚᱦᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱠ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱦᱟᱨ ᱠᱤ ᱚᱠ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱩ ᱚᱠ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱮᱜᱮ ᱥᱮᱜᱤᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱫᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱯ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱟᱨᱢᱩ ᱠᱟᱥᱞᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱱᱟᱢᱚᱨ ᱫᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱯᱪᱤᱱ ᱠᱟ ᱠᱟᱯ ᱪᱤᱜᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱝᱪᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱚᱜᱩᱯ ᱠᱟᱝ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱜᱟ ᱫᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱟ ᱠᱟᱥᱪᱟᱨ ᱠᱚᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱠᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱪᱟᱜ ᱪᱚᱠᱚᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱥᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟᱭ ᱠᱟᱨᱪᱟᱥ ᱜᱤᱭᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱥᱟᱠᱟᱫᱩ ᱵᱚᱠᱥᱚᱝ ᱫᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱚᱠᱚᱡᱟ ᱜᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱠᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱥᱮᱠᱛᱮ ᱧᱟᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱟᱫᱱᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱛᱚ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟᱯ ᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱟᱯ ᱜᱤᱡ ᱜᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱪᱟ ᱯᱷᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱪ ᱜᱚᱱᱟᱨᱤ ᱨᱟ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱪᱚᱠᱨᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱪ ᱜᱚᱱᱟᱨᱤ ᱥᱮᱨᱥᱨᱟ ᱱᱩᱥᱭᱟ ᱠᱟᱪ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱡᱮ ᱢᱟᱞᱩᱥᱤᱱ ᱱᱤ
1: ᱮᱨᱚᱱ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱛᱤᱛᱤᱭᱩᱥ ᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱛᱟ ᱴᱷᱤᱠᱤ ᱥᱟᱢ ᱫᱩᱠ ᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱤᱢ ᱫᱩᱠ ᱱᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱫ ᱡᱤᱱᱮ ᱭᱮᱱ ᱡᱤᱫᱤ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱚᱥ ᱠᱷᱮ ᱠᱚᱜ ᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱵᱩᱣᱚ ᱜᱚᱭᱚᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱫᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱤᱪᱩ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱡᱮᱱ ᱥᱟᱣ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱤ ᱪᱟᱠᱤ ᱪᱚᱝᱠᱤ ᱠᱷᱟᱯ ᱫᱟ ᱡᱮᱨᱮ ᱭᱮ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱯᱷᱮ ᱛᱚᱜ ᱜᱚᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱜ ᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱢᱟᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱤᱜ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱭᱮᱢ ᱫᱤᱜ ᱱᱤᱜᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱯ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱜᱩᱢᱟ ᱪᱤᱨ ᱠᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱩᱨ ᱜᱩᱱ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱥᱟᱣ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱯ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱛᱚᱭᱮᱱ ᱛᱟᱜ ᱟᱝᱜᱮ ᱫᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨ ᱡᱤ ᱫᱤᱝᱜᱚᱞ ᱩᱢᱵᱟ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱥᱢ ᱜᱟᱱᱟ ᱜᱟᱝᱜᱮ ᱜᱚᱞ ᱟᱨᱥᱚᱱ ᱥᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱫᱨᱮ ᱡᱤ ᱫᱤᱜ ᱱᱤ ᱢᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱟᱠ ᱟᱭᱱ ᱥᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱭᱮᱱ ᱡᱟ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱡᱮ ᱩᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱡ ᱡᱩᱱ ᱟᱭᱱᱟ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱᱤ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱠᱟ ᱴᱷᱟᱠ ᱨᱟᱡ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱮᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱢᱚᱨᱚ ᱠᱚᱨᱛ ᱡᱤᱜᱱᱟᱱ ᱠᱟ ᱫᱩᱨᱣᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱚᱠ ᱡᱤᱱ ᱟᱭᱱᱟ ᱭᱤᱱᱟ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱚᱥᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱡᱩᱨ ᱜᱚ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱢᱟ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱨ ᱡᱩᱨ ᱜᱚ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱩ ᱯᱤ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱤ ᱜᱤ ᱞᱚᱨ ᱡᱤ ᱥᱤᱠ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱴᱷᱟᱠ ᱟᱥ ᱮᱨ ᱢᱩᱠ ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠᱤ ᱥᱟᱢ ᱫᱩᱜ ᱡᱟᱵ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱞᱤ ᱠᱟᱱ ᱠᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱠ ᱠᱟᱱ ᱚᱱ ᱫᱨᱤ ᱜᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱟᱱ ᱠᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱚᱱ ᱫᱨᱤ ᱟᱠ ᱜᱤ ᱜᱤ ᱪᱚᱫᱟ ᱜᱤ ᱚᱱ ᱫᱨᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤᱱ ᱜᱤ ᱜᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱜᱤ ᱚᱱ ᱫᱨᱤ ᱫᱟ ᱪᱟᱠᱷᱤ ᱢᱚᱢᱤ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱪᱤᱨ ᱛᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱚᱭᱟ ᱪᱟᱠᱷᱤ ᱦᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱚᱭᱤᱢ ᱡᱚᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱜᱚ ᱪᱚᱠ ᱦᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱚᱠ ᱱᱮᱱ ᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱪᱚᱱ ᱠᱷᱟᱥᱢ ᱫᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱ ᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱤ ᱚ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱭᱚ ᱥᱟ ᱫᱨᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱫᱤ ᱡᱟᱨ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱢ ᱪᱟᱜ ᱫᱮ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱤ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱪᱷᱤᱴᱢ ᱠᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱨ ᱡᱤ ᱚ ᱡᱩ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱯᱷᱤ ᱪᱟ ᱡᱤ ᱚ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱭ ᱡᱤᱜ ᱢᱟ ᱠᱷᱮᱨ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱤᱥᱟᱝ ᱟ ᱪᱤᱝ ᱡᱤᱜ ᱢᱟ ᱠᱷᱮᱨ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱡᱨ ᱱᱩᱢ ᱵᱚᱡ ᱜᱤ ᱭᱚ ᱡᱤᱨᱤ ᱜᱚ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱢᱤ ᱪᱚ ᱪᱷᱤ ᱡᱮ ᱥᱟ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱪᱩᱛᱟ ᱢᱟ ᱠᱷᱩᱥᱤᱝ ᱢᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱩ ᱡᱤᱜᱟ ᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱨᱟᱢ ᱪᱩ ᱫᱩ ᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚ ᱤ ᱪᱩ ᱥᱟ ᱛᱩ ᱛᱩᱣᱟ ᱢᱤᱨ ᱪᱤ ᱡᱤᱢ ᱵᱟᱨᱤ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚ ᱪᱩ ᱭᱩ ᱛᱟ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱤ ᱡᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱛᱩ ᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚ ᱤ ᱪᱚᱢ ᱵᱚ ᱪᱚᱜ ᱢᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱟ ᱫᱩ ᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱭᱮᱢ ᱛᱩ ᱦᱩᱢᱩ ᱠᱚᱱ ᱡᱟ ᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱢᱤ ᱵᱤᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱨᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱞᱩᱜᱨᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱣ ᱪᱟᱝ ᱢᱮ ᱜᱚ ᱡᱤᱢ ᱜᱚ ᱱᱮ ᱪᱤ ᱪᱚᱠ ᱞᱟᱢ ᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱟ ᱪᱚ ᱥᱟ ᱚᱜᱚ ᱭᱚ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱠ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱜ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱯᱩ ᱥᱮᱨ ᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤᱱ ᱥᱚᱨᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱨᱮᱝ ᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱪᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱩᱱᱟ ᱛᱷᱮᱢᱵᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱟᱞᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱱᱤ ᱠᱤ ᱥᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱱᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱞᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱚᱝ ᱟᱦᱟᱱᱤ ᱪᱟᱢᱩ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱪᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱥᱟᱝ ᱦᱟᱱᱟ ᱧᱟ ᱨᱟ ᱴᱟᱠ ᱢᱟᱨᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱨᱟ ᱥᱚ ᱪᱮᱜ ᱪᱮ ᱥᱚᱝ ᱟᱥᱮ ᱠᱚ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱛᱟᱢ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱭᱩᱫ ᱜᱚ ᱡᱩᱨᱤ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱨᱟᱞᱚᱝ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱯ ᱜᱚ ᱡᱩᱨᱤ ᱜᱚ ᱪᱩᱢᱟ ᱢᱚᱢᱤ ᱪᱟᱠᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱨᱚᱢ ᱠᱩᱭ ᱛᱟᱢ ᱱᱟ ᱢᱮᱛᱟ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱪᱮᱜ ᱱᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱯᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱣᱟᱨ ᱭᱮᱞᱤ ᱡᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱱᱡᱤᱫ ᱢᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱪᱚᱝ ᱡᱟ ᱠᱚ ᱞᱩᱱᱡᱤᱫ ᱢᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱱᱮᱝ ᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱪᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱤ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱟ ᱛᱟᱜᱞᱚ ᱩᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱠᱩᱨᱢᱚᱠ ᱪᱮᱠᱟᱛᱚᱢ ᱭᱚᱵᱪᱤᱱ ᱴᱷᱟᱢᱚ ᱣᱟᱜ ᱪᱤᱫᱟ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱪᱩᱞᱟ ᱠᱟᱢᱫᱤ ᱤᱞᱚᱱ ᱠᱚᱜᱟᱢ ᱫᱟ ᱤᱫᱟ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱪᱩᱠᱚ ᱠᱟᱢ ᱧᱮᱵᱮ ᱡᱟᱜᱤ ᱪᱩᱥᱤᱨ ᱥᱤᱨ ᱛᱟᱠᱣᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱨᱥ ᱡᱩᱜᱩᱫᱚ ᱛᱚᱜ ᱤᱫᱤ ᱪᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱧᱟᱯ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜᱱᱟ ᱡᱤᱵᱫᱟᱠ ᱢᱟᱭᱱ ᱨᱩᱜᱩ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱩᱠᱩᱱ ᱜᱚᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱡᱤᱵᱫᱟᱜ ᱮᱱᱨᱩᱜᱩ ᱪᱩᱱ ᱪᱟᱵᱚ ᱜᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱥᱚᱝ ᱡᱮ ᱪᱟᱠᱥᱮ ᱠᱚ ᱪᱚᱨᱟᱢ ᱧᱚᱢ ᱢᱟᱨᱜᱞᱟ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱩᱛᱥᱟᱡᱱᱟ ᱪᱩᱡᱤᱠ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱥᱚᱢ ᱥᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱭᱛᱟ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱪᱩᱞᱚᱴ ᱫᱤ ᱞᱚᱨᱥᱟ ᱪᱟᱠᱥᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱪᱟ ᱵᱟᱛᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱡᱩᱭ ᱪᱟᱢ ᱠᱩᱛ ᱧᱤᱝ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚᱱᱮᱱ ᱡᱩᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱚᱝᱥᱟᱢ ᱞᱚ ᱟᱛᱨ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱪᱩᱥᱟ ᱭᱚᱜ ᱛᱚᱜᱢᱤ ᱠᱮ ᱛᱚᱜᱟ ᱥᱮᱨ ᱱᱤᱜ ᱛᱚᱜ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱫᱤᱫᱟ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱤ ᱪᱩᱴᱟ ᱟᱵᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱢᱯᱟ ᱛᱚᱜᱢᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱟᱞᱟ ᱟᱱᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱨ ᱫᱤᱫᱤ ᱜᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟ ᱱᱤᱥᱤ ᱪᱩᱢᱟ ᱱᱤᱨ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱜᱚᱠᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱪᱩ ᱪᱮᱥᱟᱵ ᱥᱤᱱᱭᱟ ᱢᱚ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱠᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱜᱚ ᱪᱩᱦᱟᱥᱢ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱜ ᱠᱚᱱᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱝᱠᱟᱨ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱚᱫᱟ ᱛᱷᱤᱜ ᱡᱟᱜ ᱠᱚᱱᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱪᱤᱨ ᱫᱚ ᱞᱚᱨ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱮᱵᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱚᱪᱤᱜᱟᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱪᱮᱱᱥᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱠᱟᱨᱥᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱭᱮᱱ ᱫᱩᱠ ᱪᱮ ᱛᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱱ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱚᱥ ᱛᱤᱠᱣᱟ ᱪᱮᱱᱨᱮ ᱡᱤ ᱪᱩᱛᱚᱨ ᱪᱤᱱ ᱢᱚᱭᱟ ᱧᱤᱨ ᱡᱟᱡ ᱡᱟ ᱜᱟᱭ ᱚ ᱫᱚ ᱡᱟ ᱪᱟᱭ ᱠᱷᱤ ᱢᱩᱠ ᱛᱟᱢ ᱛᱤ ᱠᱩᱥᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱫᱟᱢ ᱢᱤ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱡᱩ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟ ᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱪᱟ ᱛᱤ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱚ ᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱢᱚ ᱛᱤ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱠᱚᱥᱟᱢ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟ ᱠᱩᱡᱩ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱥᱟᱝᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱛᱷᱤᱠ ᱡᱟ ᱠᱩᱡᱩ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱠᱟᱵᱞᱟ ᱭᱟᱨ ᱪᱷᱟᱠᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱩᱜᱞᱚᱜ ᱱᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱚᱨ ᱱᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱟᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱱᱥ ᱴᱨᱤᱵ ᱡᱤ ᱴᱮᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱵ ᱠᱚ ᱡᱚᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱨᱜᱟ ᱪᱷᱩᱢᱨᱟ ᱠᱷᱮᱨ ᱛᱩᱝ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱠᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱨᱮ ᱪᱷᱟ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱵ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟ ᱱᱤᱜ ᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜ ᱭᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱚ ᱡᱟᱯᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱨ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱣᱟ ᱠᱷᱮᱨ ᱫᱩ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱷᱟ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱢᱟᱡ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱷᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱢᱟᱡ ᱡᱤ ᱜᱚᱱ ᱪᱤ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱢ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱨᱤ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱦᱚ ᱠᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱢ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱠᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱜ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱫᱟᱨ ᱠᱷᱚ ᱵᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱨ ᱡᱟᱱ ᱡᱚᱨ ᱜᱚ ᱫᱚ ᱢᱩᱠ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱞᱤᱝ ᱜᱚ ᱭᱮᱢ ᱛᱟᱨ ᱤᱱ ᱡᱚᱨ ᱜᱚ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱱᱟ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱠᱤ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱞᱚᱝ ᱥᱚᱢ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱠᱷᱚ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱨ ᱡᱩᱜ ᱱᱤ ᱭᱟ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱧᱮᱢ ᱪᱮ ᱢᱟ ᱪᱚᱝ ᱟᱠᱤ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱠᱷᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱢᱟ ᱪᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱞᱮ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱱᱤ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱡ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱞᱟᱵ ᱫᱟ ᱞᱚᱜ ᱱᱟ ᱨᱟᱡ ᱢᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱴᱚᱠ ᱞᱟᱢ ᱧᱮᱢ ᱠᱚ ᱡᱟ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱚᱨ ᱫᱚ ᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢ ᱞᱚ ᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱪᱚ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱨᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱡᱤᱠ ᱛᱤᱱ ᱠᱷᱟᱢ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱠᱤ ᱪᱩᱠ ᱫᱤᱱ ᱟᱱ ᱴᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱪᱟᱜ ᱥᱟᱢᱤ ᱚᱱᱫᱮ ᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱴᱷᱟ ᱴᱷᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱴᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱴᱷᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱩᱞᱟ ᱯᱷᱟᱨ ᱪᱤᱨ ᱠᱟᱨ ᱛᱩᱠ ᱱᱟᱜ ᱛᱩᱠ ᱭᱮᱱ ᱴᱚ ᱠᱚ ᱪᱩᱠᱟ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱨᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱪᱩ ᱴᱩ ᱴᱟ ᱛᱟᱨ ᱨᱟᱣᱟ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱢᱚ ᱡᱚᱨ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱩ ᱦᱟ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱢ ᱱᱟ ᱞᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱠᱷᱟᱨᱤ ᱢᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱞᱟᱝ ᱴᱚᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱚ ᱱᱚ ᱴᱮᱥᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱡᱚᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱚ ᱪᱩ ᱯᱟ ᱠᱷᱟᱭ ᱚ ᱡᱤᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱟᱛᱨ ᱠᱚ ᱡᱚᱵ ᱛᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱡᱚ ᱜᱚᱱ ᱥᱟᱢ ᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱟᱠ ᱛᱟᱝ ᱚᱱᱡᱮ ᱠᱤᱢ ᱪᱷᱤ ᱵᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱴᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱱᱡᱮ ᱫᱚ ᱫᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱢ ᱵᱚ ᱡᱨᱮ ᱥᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱯ ᱪᱮ ᱡᱨᱮ ᱪᱚ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱜ ᱢᱩᱜ ᱞᱟᱜ ᱤᱱᱫᱨᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱱ ᱟᱪᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱨ ᱚᱱᱡᱤᱠ ᱥᱤᱝ ᱤᱭᱟ ᱛᱚᱱ ᱨᱟ ᱫᱚ ᱜᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱨ ᱚᱱᱡᱤ ᱪᱩ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨᱛᱤ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱨ ᱚᱱᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱭᱟᱠ ᱟᱢ ᱪᱟᱨᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱟᱠ ᱜᱚᱢ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱢᱚᱠ ᱪᱚ ᱢᱚᱢᱤ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱱᱤᱛ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱟ ᱡᱟᱡ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱵᱤ ᱴᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱴᱟᱯ ᱫᱤᱜᱮ ᱜᱚᱛᱟ ᱱᱟ ᱜᱟᱯ ᱩᱱᱫᱟᱝ ᱟᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱟᱛᱟᱨ ᱜᱤ ᱡᱚᱵ ᱡᱟ ᱡᱩ ᱡᱚᱢᱥᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱥᱭᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱨᱟᱵᱤ ᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱮ ᱛᱟᱨ ᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚ ᱜᱤ ᱢᱟᱝ ᱟᱥ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱩᱠ ᱛᱟᱨᱮ ᱡᱟᱣ ᱪᱷᱟ ᱨᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱭᱚ ᱥᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱱᱟ ᱵᱤ ᱪᱷᱟ ᱨᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱟ ᱦᱚᱨ ᱠᱚ ᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱠ ᱥᱟᱢ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱦᱟ ᱪᱩ ᱪᱚᱱ ᱨᱤᱜᱤ ᱢᱤᱱᱤᱢ ᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱨᱤᱝ ᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱞᱚᱜ ᱪᱷᱟᱨ ᱥᱚ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱞᱚ ᱪᱷᱤ ᱜᱚ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱚ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱭᱮᱱ
2: ᱭᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱨᱚᱝ ᱧᱮ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱚᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱜᱚ ᱡᱚ ᱟᱜ ᱡᱟᱵ ᱫᱤ ᱡᱟ ᱩ ᱴᱷᱮ ᱡᱤ ᱢᱚᱝ ᱥᱮᱨ ᱜᱟ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱴᱷᱟ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨ ᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱚᱱ ᱨᱮᱢ ᱜᱚ ᱦᱤ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱴᱷᱚ ᱟᱫᱤᱱ ᱠᱟᱨᱚ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱚᱵᱮ ᱜᱟ ᱟᱱᱨᱚᱱ ᱡᱤ